0: 些话我想对你说很久了，广告过后让我说给你听。
1: एक लड़की थी दीवानी सी, जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।